एस आदि खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सैंगजा

0: access to all.
1: 阿妮，单有卡给姐妹听吧。
2: 哦，真该。
1: 这一 personal number block 来吧的。
2: personal mobile number 咪，乌尼有 telecomer 被 officer 来的 block 来的看开。
1: 阿妮 ，bankery。
2: bankery。
1: 啊。
2: चार सौ इतनी लग पड़ी
1: सम लग पड़ी ना आपने ना मोबाइल नंबर फिर दिया बदिरा ब्लॉक तैयार विषय आपने ना बैंक दे बिनी जानकारी पिन पर हिम दे आपने ना बैंक खाते ना जानकारी और ही ना योरी थोड़ी देखिया सचित तल पर हिम
2: सतर्क तना ठगी तब द क्या जोगी ना
3: सिद्धार्थ बैंक र क्या ले जन हितरी जारी संदेश
4: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरी लाई

एस आधिक फ्लाग खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सेंचा।